0: ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ 12 പ്രകാരം അർഹരായ പൌരന്മാർക്ക് ന്യായബന്ധു മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയോ www.probono-dog.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ സൗജന്യ നിയമസഹായം തേടാവുന്നതാണ്.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है. NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर
3: आकाशवाणी FM रेनबो 107.5 म्यूजिकली योर्स.

0: പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ടെലിലോ ന്യായബന്ധു നിയമസാക്ഷരതാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കാളികളാകും. നിയമസഹായത്തിനായി ടെലിലോ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1444 www.tele-law.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ ബന്ധപ്പെടുക.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है हमसे ज्यादा होशियार है उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो.
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.
3: Listen to music to your hottest content worldwide. Rainbow FM Kochi 107.5. Musically yours.

0: സഹായത്തിനായി ടെലിനോ ആപ്പ്, www.tele-law.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1-4-4-5-4 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है. अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.
3: You are listening to FM Rainbow 107.5.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: You are listening to Rainbow FM 107.5, musically yours.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: ആകാശവാണി കൊച്ചി FM റെയിൻബോ 107.5 കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സവാരി ടൈം.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
0: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആകാശവാണി റെയിൻബോ FM കൊച്ചി 107.5 മ്യൂസിക്കലി യോഴ്സ്.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: Musically yours. You are listening to Rainbow FM Kochi 107.5. 107.5.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: Listen to your favorite tracks on Kochi FM Rainbow 107.5. Stay tuned.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: Listen to your favorite tracks on Kochi FM Rainbow 107.5. Stay tuned.

0: ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ 12 പ്രകാരം അർഹരായ പൌരന്മാർക്ക് ന്യായബന്ധു മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയോ www.probono-doc.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ സൗജന്യ നിയമസഹായം തേടാവുന്നതാണ്.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए. और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो.
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु

तो NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23

0: സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിനായി ടെലിലോ ആപ്പ് www.tele-law.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 14454 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है. अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.
3: You are listening to 107.5 Rainbow FM Kochi. Musically yours.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: Musically yours, this is FM Rainbow 107.5.
3: Your favorite music station.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: You are listening to Rainbow FM Kochi 107.5. Musically yours.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: Listen to your favorite tracks on Kochi FM Rainbow 107.5. Stay tuned.
3: യോ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിളിക്കാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇതാണ്, 0484242810. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോളർ ഉണ്ട്, നോക്കാം. ഹലോ,

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: News, views, entertainment. This is

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आकाशवाणी FM रेनबो 107.5।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आकाशवाणी FM रेनबो 107.5 म्यूजिकली योर्स।

0: सीपीसीआर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.5।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आकाशवाणी FM रेनबो 107.5।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ में हमारी सारी सखियों सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, ये तो आज भी वजह बताइए
2: भाई। एक बार जब भी आते हैं ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना,
1: हाँ,
2: सेहत का ख्याल है या नहीं।
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
2: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
1: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही
2: हैं, बिल्कुल
1: वो हमसे साझा कर सकती हैं। लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
2: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है, तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
1: हाँ,
2: है ना।
1: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े, या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लगकर बताएंगे।
2: जी बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
1: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
2: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया है, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किश्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
1: देखो
2: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला साधारण नहीं।
1: क्या होता है ना आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
2: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी हैं, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
1: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना, देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है जहाँ पर हम KG1 KG2 के जब पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
1: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बस अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की

0: लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बस अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफ़र अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो
0: भाई, जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
1: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना, जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफ़र हमें यही बताता है चंचल, कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर
0: जी
1: पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीज़ों
1: बिल्कुल।
0: से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है,
0: जी
1: और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या
0: जी
1: 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा।
0: जी
1: ज़रूर अपने पास की किसी कोई क्लास, कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा ज़रूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि
1: जी
0: बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा।
0: आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। तो
1: बिल्कुल।
0: आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौल, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज़्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो, तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ
1: रंगोल
0: रंगोलियां
1: जी
0: अल्पना
1: जी
0: बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरी बाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी, और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरी बाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे,
1: जी उनके पति चले आए
0: हाँ
1: पति के साथ।
0: पति के
1: जी
0: साथ वो चली आई, और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहाँ शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहाँ के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरी बाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी
1: जी
0: दौरान उन्हें ये भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरी बाई से देवी देवताओं के चित्र कागज़ पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे, लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज़ पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा
1: ये
0: गया।
1: उनको कहा, तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरी बाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया, जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहाँ जी
0: भाई उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी, और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई, और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है

0: जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी, जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है, तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरी बाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरी भाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है.
1: बिल्कुल.
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है.
1: बिल्कुल सही कहा. और देखिए, यही एक संदेश हमारी सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा. हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं. सोचो, अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती. भाई, सखी सहेली के रहते
0: जी.
1: आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी.
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर, या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं.
1: जी.
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है. लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का. और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं.
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा.
0: जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं.
1: बिल्कुल
0: और
1: सही.
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है.
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता. सोशल नेटवर्किंग के इस जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है. तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता.
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं. आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ, पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ
0: हाँ,
1: करती थी.
0: दिल से जुड़ जाते
1: और
0: थे.
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए.
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं. वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं. एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है. दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं. खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी

0: रंग हैं, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ अहम इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: बिल्कुल
0: होती।
1: सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, और दोस्ती यही मांगती भी है। अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो
0: जी
1: तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो हिचकते नहीं हैं, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए,
2: कहानी बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो।

0: सही होगा। हम पालो है भारत के, जो कहे वो ही होगा।
1: ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा। हम पांडव है भारत के, जो कह दे वही होगा।
2: ओए जम के एक जमा दूं,

उंगली से उंगली का जब तक जोड़ सलामत, साथ सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन, पांच से पांच मिले।

बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में सिर्फ दोस्ती ही होती है, कोई एहसान नहीं होता, लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे
1: दोस्ती की।
0: देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब, सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी ज़िंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूँ तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भाई बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं। तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल। अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बात

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप ज़रूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि

0: रिश्तों पर खरीदारी करना, इनकी कहते ना आसान ईएमआईज पर किसी चीज को ले लेना, जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
1: बिल्कुल सही कहा, अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है भाई, आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीज़ें फिर जा रही हैं।
1: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है, या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीज़ों को लेना।
0: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किस्त बनानी होगी ना, आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज़ होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
1: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है, हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
0: मैं फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना, अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है सजा भी हो सकती है, उन चीज़ों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है उतनी आमदनी आपको रखनी या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की किश्त है तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है, बाद हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हज़ार के नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक पे चली
0: और वो जो 20,000 की चीज आपको खरीदनी थी वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना जो एक प्रलोभन होता है उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है क्योंकि आपने आपके पास ज़्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है तो अक्सर लोग अब किश्तों में ख़रीदने को अच्छा महसूस करते हैं, हालांकि ये नकद ख़रीदने से महंगा पड़ता है लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं, मासिक भुगतान का ये आइडिया ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं तो वही चीज़ें आप खरीदें क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफ़ी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी

0: उसमें महंगी पड़ जाती है और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और पैसा भी डूब जाता है।
1: बिल्कुल ये सही कहा। देखिए इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी
0: जी
1: हो सकती है, GST कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किश्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे EMI चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किस्त
0: जी
1: बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज़्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप EMI के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी EMI का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी उसका 10% ही सिर्फ EMI में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
0: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा
1: चलिए
0: दें
1: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं गर्मी बहुत है,
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहाँ उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है, आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं, और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते
0: तो
1: हैं।
0: उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज़्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफ़ी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए, क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
1: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे। नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं। और एक बार कपड़े, जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना
0: जी
1: पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई हैं कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
0: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें, तो सफ़ेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफ़ेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है, जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में, वहाँ रगड़ कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबाल कर, नींबू का रस निचोड़ कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचल कर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको
0: जी
1: पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं सखी सहेलियों से इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवा ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना आप, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी। तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है। तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम उसको लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी। तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
0: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
1: सजन से झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो, खुदा के पास।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहा है, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुआ ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिन से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश छाया गीत, और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: मेरा माँ है पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात मंदिर है माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा,
1: तो ये से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी के आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, सजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी बहन जी, नमस्कार
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूल वाला काम, डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार

0: सुबह आना ही पड़ेगा
1: जी, बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं।
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सिर्फ अली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो भी भारतीय का सुनने वाला हूँ मैम। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी, 20 साल से ऊपर हो गया, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ। ऐसे ही जुड़े रहें और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी मैम, बिल्कुल फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम।

0: बहुत फेमस घाट हुआ है।
1: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
0: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
1: जी जी, और उसका जो अक्ष गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है।
0: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम। गाने का बोल है अलिफ जोहर आल अली जोहर आल अली जोहर ए अली तो सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
1: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल हैं?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम
1: जी
0: होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी ये काम, बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत,
0: जी जी जी जी
1: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं, पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती

0: जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है।
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियां मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप्स पे आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप्स पे। और अगर हम कहीं बाहर भी जाएं ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप्स पे आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है पहले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलॉइड के सितारे शुरू किए हैं और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं खेत से कर रहे हैं क्या।
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश पाटकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हॅलो फरमाइश.
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मतराज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी. आपका पुराना श्रोता.
0: हिम्मत भाई नमस्कार.
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं. अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी.
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था. काम पर से अभी फोन लगाया मैंने.
0: अच्छा, तो आप बताएं, हाँ? वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी.
0: अच्छा.

0: तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली तो वो छुट्टी जो है ये हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपान दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है, खूब गर्मी पड़ रही है?
1: अमरावती विदर्भ में बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: उड़ी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब के आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते, आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह। जी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है स्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हाल चाल है, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है, और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है, और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिकद्वारा श्रीनाथ जी का बहुत शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है उदयपुर में ही, हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है, जोत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से, तेरी

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली बहन को नमस्कार,
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय तो होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून लगाते कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं आप,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बंद है।
0: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जय गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो।
0: काल जयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: साथियो, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 28670288 28670288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

कभी कभी स्टारडम सिर्फ एक्टिंग से नहीं आता, इट कम्स फ्रॉम कनेक्शन, द ऑरा ऑफ द एक्टर और एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस, एंड दैट्स सलमान खान। सलमान खान या फिर फैंस के लिए सिंपली सलू भाई। हिज बॉलीवुड जर्नी स्टार्ट हुआ लेट 80s में, लेकिन रियल ब्रेक तो आया मैंने प्यार किया के साथ, और उसके बाद एक न्यू हार्ट थ्रॉब वॉज बॉर्न स्पेशली अमंग यंग ऑडियंस। उस वक्त सलमान का इमेज था चार्मिंग, इनोसेंट, रोमांटिक हीरो, लेकिन धीरे धीरे ये इमेज इट स्टार्टेड इवॉल्विंग इनटू समथिंग मच मच बिगर एज अ मास सुपरस्टार। 90s और अर्ली 2000s में उन्होंने डिफरेंट रोल्स ट्राई किया, कभी रोमांटिक, कभी इमोशनल एंड कभी एक्शन, एंड देयर वाज आल्सो अ फेज जहां उनका करियर थोड़ा अनस्टेबल हो गया विद अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड देन केम अ वेरी मेजर turning point in his career, that is in 2009 with the movie Wanted. And in Wanted, Salman Khan was reinvented. He became a full mass action hero, a larger than life presence, punch dialogues, the swag, and everything changed. Aur uske baad aaya Dabang, Bodyguard, Ek Tha Tiger, Bajrangi Bhaijaan, Sultan jaisa back

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

Yes, welcome back to Surumesham. This is RJ Abhi on the mic and we were talking about the Khans of Bollywood. Times changed, new actors aaya, trends got changed, but some names aisa hota jo time ke saath fade nahi hota. They just evolved and that's the Khans. SRK, Salu Bhai aur Aamir, teen decades ke baad bhi, they are still relevant, still discussed and still followed. In teenon ka stardom is not just limited to films. It has become part of the popular culture. The conversations, the memories, the TV shows, the concerts, the nostalgia, everything. And aaj bhi, agar Bollywood ke biggest superstars ki list banaye, in teenon ka naam bina, it is not complete. Aur shayad isliye people say, ye sirf actors nahi, they are probably the last of that superstar era. Naye stars will come every day, lekin jo space they have created, that will always stay special. तो दोस्तों अब चलने का वक्त आया. इट्स टाइम टू कंक्लूड टुडे सुरमेशियम. और आज का सफर भी काफी इंटरेस्टिंग रहा. फ्रॉम वन इरा और तीन आइकॉनिक नाम, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, सिर्फ स्टार्स नहीं बट अ फेस ऑफ बॉलीवुड जो आज भी इज वेरी रेलेवेंट अगेन एंड अगेन. हर एक अपना स्टाइल, अपना स्पेस और इसी वजह से दिस जर्नी इज वेरी वेरी स्पेशल. तो स्लोली वाइंडिंग अप टुडे सुरमेशियम. फिर मिलेंगे एक नए थीम के साथ, एक नए सफर के साथ. This is RJB signing off. फिर मिलेंगे चलते चलते.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।